हलत पलत दोएले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

संत बाबा तरसिए, महापुरुष मस्तु आने वाले। कोल गुरसिख बैठे ने, एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या, अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी, कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने आ। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी। भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हां, करो। अठ घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम। ठेकेदार ने बुला के आख्या, ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं, वायदा अठ घंटे दा है। फिर दुगनी मजूरी देन लगा, कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवां। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा, आटा घिओ दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए, कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन, ए कोई फरिश्ते, ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखद्या वेखद्या बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया, कहन लगा तू मजदूर नहीं है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपे छपाया। गुरु की साथ संगत, कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, ते झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

मेरा तन गुरु नानक पातशाह है। कलयुगी जीवन के उद्धार करने वास्ते जा रहे सोलह कला संपूर्ण चलिया अनंत कला हो ठाकुर चढ़े

0: इनको 14 कलश कला के निशक्ति निरंकार की शक्ति त्रेते युग के अवतार भगवान रामचंद्र जी 14 कलश द्वापुर युग के अवतार भगवान कृष्ण जी 16 कला लेके आए पर निरंकार की सारी शक्ति का मालिक कौन प्यार सारे आखो
1: तारी
0: लिखा अनंत कल यदि गिनती मिलती कोई जिस तरह वाहिगुरु बेअंत है उसकी शक्ति भी बेअंत है उस शक्ति को लेके अर्शों को हर्षों से मात लोग दे जीवों की कल्याण करने वास्ते आप निरंकार मेरा धन गुरु नानक पातशाह बन गया साहबा ने तकिया संसार रोगी है मात लोक दे रहने वाले इंसान सारे रोगी किसे नु कोई दुख है किसे नु कोई दुख तो जगत की हालत नु तक के हजूर अज जा रहे हम जा रहे है सच्चा वैद रोगी मनों नु आरोग करना दुखी जनता नु सुख देना हमें रोग मानुक को दिना काम रोग मैंगल बस्ती में दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गए पुरंगा हजूर के अंदर जो जो दिश है सो सो रोगी हर कोई रोग जो जो दिश है सो सो रोगी बाली रोवे नाए भतार नानक दुखिया सब किसी को कोई दुख लगा है किसी को कोई जिसे कोई माया नहीं है वो भी दुखी ते कई को बहुत ही आ गई है वो भी दुखी जिसे कोई माया नहीं वो भी रात दिन हाय माया की कल्पना ते जे किसी को बहुत ही आ गई है वो भी अजूर बाणी फरमाते जिस ग्रह बहुत ही तिस ग्रह चिंता जेदे को नहीं वो माया चाहता ते जे किसी को बहुत ही आ गई है उन्हें नींद नहीं आती कि किधरे माया दे लालच चोर आके मेरा सिर ही ना वड़ ओनू राती नींद जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे और बनता जिदे कोल नहीं वो भी दुखी जिदे कोल है वो भी जिदे घर पुत्र नहीं है वो भी दुखी रात दिन अरदासा करता है वाहेगुरु मेरे पुत्र की बात पर कई पुत्रों तो भी तंग है जिदे घर पुत्र नहीं वो भी दुखी तो जे पुत्र नलायक हो गया है माता पिता तंग दुखी जिदे घर है वो भी दुखी जिदे घर नहीं कोई चौधर से मान वड्याई वास्ते परम ना सारी दुनिया जो जो दिश है सो सो रोगी किसी को तन का रोग लगा है किसी को मन का रोग लगा पर आरोग कौन इस दुनिया में आरोप पाने तो हजूर फरमाते बाणी जो जो दिस है सो सो रोगी रोग रहित मेरा सतगुरु अरोग सतगुरु अरोग कौड़े प्यार नाल सारे आखो धनगुरु अज अरोग दाता दुनिया नु अरोग करने वास्ते जा रहे पिछे मर्दाना मोढ़े ते रवाब भरे सोचा ते दलीला तुरिया जाए मर्दाना सोचता है पता नहीं मालिक किधर का काफी समय हो गए तुरे ही जाने उन्होंने लोग बुरा भी कह मंदा भी कह पर वो अपने सच्चे रस्ते पे चल देंगे पर दादिया उदास ना मरदानिया पाबर ना तू कहो मेरा निरंकार एदा भी पलट मरदाने ने कहा हमारा इस पापी का पलट जे मेरा बोले या रब सुनदा होवे मैं तो कहांगा संकारी नु रब उथे बारे जिथे पानी ना नसीब हो ना पर तू कीर्तन करना तेरी रचना ते गुरबाणी का वास है जिथे गुरबाणी का वास है उथे निरंकार का वास है प्रधानिया कहो मेरा निरंकार एदा भी भला बाबा एदा भला हजूर कहन लगे हाँ प्रधानी तू कहो मेरा वाहिगुरु एदा भी भला बुरे नाल सब बुरी करें दे माफ करन के सियाने बुरे नाल फिर नेकी करनी ए गुरु नानक ने प्रधानी साडा तीजा वचन ने मोड़ न तू ही कहो मेरा निरंकार एदा भला करे ते मेरे सिख भी वाहिगुरु अगे अरदास करया करनगे ते की कहणगे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पारे सरबत ते सरबत दा भला मंगण वाला दुनिया च कोई आया है तो मेरा धन गुरु का रिश्ता सारियां साहबा ने बाणी किया सबे जी संभाल सबे जी संभाल अपनी मेहर कर गुरु ने सारियों का पलट गुरु नानक क्यों वड्डा है धन गुरु नानक पातशाह क्यों सारियां तू वड्डा है तेरी सास ने धन गुरु नानक पातशाह जी ने सारे नाल प्यार किया आओ तेरी पढ़ी।

गर्व ना कीजे नानका मत सिर आवे करोड़िया। तो केड़ी चीज का माण कर जवानी का, ये जवानी सदा नहीं रही, आउंदी है चली जाती, ये झूठा हुकूमत का माण कर दे। इस संसार च वड़े वड़े राजे महाराजे आ गए जिन्हों का नामो निशान नहीं है, माया का माण करदा यह भी झूठा हुआ। माया ये तो चलता पानी, ये माण भी की निरंकार ने तेरी मनुष्य जन्म दिता, चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं। याद रख एक दिन पछता है, साहबां का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने सुने, पत्थर वर्गा मन पानी है, काठी सिर को रख दिती, दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा ते रोज लग पातशाह मेरू बख्श लो, मैं पापी मेरे कोलो भुल हो गए, अपने चेहरे के दाग जेड़े दिखते जे शीशे कोल जाइए, शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता। इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हों का पता तो लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए, महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो जाए। अज धन गुरु नानक पातशाह जी निरंकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रही, घुब्बा मार के रोई जाता, कहता है पातशाह मेरे बख्श, अरदास कर रहे आओ आप भी करिए। किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है नाले पर, पहला सेवक बोलेगा पीछे सारी समझ।

रो लिया है। रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुत हो पातशाह बस अदूर कहन लगे मरदानिया बख्शीए। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो, ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद तो। हजूर ने अमर दृष्टि कटिया से किया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पुष्ट नाले बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन नरंकार ने माया दिती है दान पुण्य को जो माया भी कर सत्य हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहता है पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल रहा मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव। अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए। मरदाने ने कहा महाराज ये भी कोई पूछने वाली गल है चलो हूं तोड़ा सिख बन गया कौड़िया। अदूर कह लगे मरदानिया अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह। हजूर कह लगे बरदानी अजय सिखी दिती सिखी की है हुक्म जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्ला इस गल्ला की सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करी असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह भी छकांगे। करोड़िए चरना ते कहते पातशाह मैं गरीब ने भी बख्शिश कर दी है। हजूर कहन लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आ है फिर जिना संभाल लेता है वह पाए करोड़िए बख्शिश होगी थोड़े तो भी गुरु की बख्शिश होगी बख्शिश वाला समा मिले बख्शिश तो शरीर ही है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्होंने ताडा विचे बख्श दो आके आप कीर्तन जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शी ही जी नागा नहीं पाएगा। चौड़िया ये मालिक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसी पास उड़ीक है ते कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे माई भाई कीर्तन का अमृत पी तो ये दात गुरु की अपनी है। हजूर कहन लगी मरदानिया रवाब चुकी ते शब्द ही अखीली तक पर मरदानिया ने रवाब चुकया ते बाबे ने सोने गले चे सदका की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: परीक्षा से जो गुरु का उपदेश सैबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले हर पल आपे मेले और कैरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहे है अमरीकन सिंह ते गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर भाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक दा सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई ओदे कोई विथ नहीं है सारे बापू दे बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रोटीन कह दीजिए उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जामी गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चियों सुखी जीवन सदाचार दिया तला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू Thank you.

अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। सिर गुरु रामदास।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आया वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजलि देनी शुरू कर दिंदा, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदा। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आना। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

परमेश्वर आप हुआ रखवाला, परमेश्वर आप हुआ रखवाला। शांत सहज सुख मह उपजे।

गंभीर प्रतिक्रियावाद है। विलक दी आत्मा कृपा दी जाचना कर दी है, ते आपे दी खोज कर दी है। इसलिए इसे राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतांत दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखन जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासो। शब्द बोल हन गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं, जो शायद साढ़े कभी ख्याल च भी ना दे, गुरु बाबा जी साढ़े जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी की ऑब्जरवेशन साढ़े जीवन के प्रति यह है कि जीवन की विध ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के किते हर वेले सामने रखो, ताकि ये सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हाँ फिजिकली, बेशक असी इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो गए हाँ, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हाँ, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता, तो कितनी बड़ी गल है। और इसनु जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नु जरूर पाएगी कि सच मैनु जीना नहीं आता, कि मैनु जीना ही नहीं आता, जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आंदा की। फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की विध ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हां वो गलत नहीं होएगा। फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी दे नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नूं एक दे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी ये सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति ये डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आता, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आता है, तो फिर असं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विध ना है, जीन की विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन नूं हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नूं
ओ रबी नूर, रबी आत्मा जो साडे जीवन नू देखदी है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है? आप आशा जी की बात सुन दे, मैं आपको फिर सुना देना। फलिए फुलिए बपड़े विचारे देखने बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलिए फुलिए बपड़े भी तन विच स्वा, पर अंदर तन दे विच स्वा है, कुछ भी नहीं राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनन मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज भी मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आ। आप जी ने कितनी दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पाउंडर किया होगा? ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी दफा ये गल सुनन मिली है, कितनी दफा ये गल ही सुनन मिली है, कितनी दफा किसी ने यह पॉइंट ही रेज किया है या सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू ते भी हले जीना भी नहीं आता। पर असी आके महाराज जी नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी असी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि साडे गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव नू असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख कर दिता है, पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रैकाल सत। सो आज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हू पहले किसी ने इस उते असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हू पहले किसी ने इस उते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ए है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव। सानू जीना ही नहीं आना, जीवन की बिदना है। प्यार नाल इस मंत्र को सुन

आप जी याद होएगा जिस पंक्ति उते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जी बेनती की थी सी इस पंक्ति नु अपने नाल लेके जाओ। वो केड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनु जीवन जीना आंदा है उसे भी ही जीवन दी यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो किथे पहुंचेगा? वो किते भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधना है, असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए हैं, असी कामयाब हो, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बींग ए सिख ते सक्सेस नू गुरु बाबा जी तो ही समझना है ना कि गुरु साहब सक्सेस किसनू आखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज दी निगाह च सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस की है? वो है कि जीवन की यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिदा है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस दे उते शब्द उचारदे हन, कहंदे हन

बहुत प्यारी गल है समझण वाली। स्त्री पुरखे खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किवें पूरे होंदे हैं, मैनू सुख इस तो किवें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किवें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हाँ, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आया, इत्थे भी समझे नहीं कि ये रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे को दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जब पूरी नहीं होंगे तो कहते बेशक भावे आवो तो भावे जाओ, जब मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो इजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तो जीना ही नहीं है,

बाहर है उसकी विचार कल कीती जाएगी। ये लड़ी इसी तरह चलती रहेगी। भूल चूक की खेमा जीवन की विद ना है, इस पंक्ति नु याद रखियो। रात में सौण वेले भी इसते रिफ्लेक्ट करियो, कर जाके आपस विच एक दूसरे दे नाल इस सारे थॉट प्रोसेस नु फिर द्वारा शेयर करियो, ते होर भी किसी दे नाल शेयर करियो, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न दैट वंस यू लिसन समथिंग देन गो एंड शेयर विद समबडी। ऐसा ना होवे कि लंगर दे विच बैठ के सारी गलबात ही तब्दील हो जाए, देन वी फॉरगेट एवरीथिंग। उसका अर्थ यह होया कि असी सुनाण वालियां दा भी टाइम वेस्ट किया और अपना भी टाइम वेस्ट किया। सानू शांति दे नाल, क्वाइटनेस दे नाल, चुपचाप होके अंतर ध्यान होके लंगर छक के चले जाना चाहिए। जहां गलबात होवे तो उसे ही टॉपिक ते होवे जिसनू असी हुणे सुन के हटे हाँ, ताकि वह साड़ी याद दे विच रहे। सर तूल चुक दिखेवा जीवन की विद ना है। वाहेगुरु जी का खालसा।

0: पारिधान जगदगुरु
1: करुणालय है
0: अर्थालय है खल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है।
1: हे प्राणनाथ गोविंद
0: कृपा निधान जगत गुरु हे संसार पाप हरणे करना में सब दुख हरो सर्ण जोग दयाले हे सर्ण जोग दयाले दीनानाथ मैं आकर आऊं

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी दी अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखा दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चिए वर्तिए उन्ना ही जिवें होर वधिया होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजयाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहने की जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटाण वाला, इसम फाइल। ते सरार सिर वाहद, सरार जमा सिंगुलर प्लूरल, एक बचन बहु बचन। सरार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही पेता नू सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह, बाबा नंद लाल जी कहते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए, बेअंतता दसते हुए, वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने, तू इतना वड्डा है के रोख रूहान की रोजी ना टारे। रोजी हिराज विलोक तराजक, रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेनु मनदे ने, तेरे प्रेमी ने, तेरी होंद दे धारनी ने, तस्लीम करने वाले ने, उना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने, उना दी ता गल की करनी है? उना वल ता है प्रभु, तेरा ध्यान ख्याल होना ही है। पर तू ते एडा बेअंत है, एडा बेनियाज है, रोजी हिराज विलोक तराज कर, रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखियां, रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है, रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है। जिन्हां विच लचक ना होवे, लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा, जड़ां गजाज दे जांदियां ने, हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है। पर एक लकड़ी सुक जांदी है, उहदे विच जीवन नहीं हुंदा, समझो कि मर गई, अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखिए ते कमाल दी गल है, इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा, उहदे विच लचक रहिंदी है। ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है, मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा। जो बंदा आकड़दा है, होमे विच आकड़िया होया, उन्हूं मुर्दा समझो, क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं, मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहिंदे ने, सच्चे पातशाह तूं बड़ा बेअंत है, जो रुखे ने, सुके ने, जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने, ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने, उन्हां नूं भी तूं अपने गैबी खजाने विचों वड मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए। धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेका पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है, जो ते तो मुनकर ने, तेरियां दातां भी ले जांदे ने, तेरियां बख्शियां भी मानी जांदे ने। हे मुनिम परमेश्वर, तेरियां नेमतां भी मानी जांदे ने, ते तो मुनकर भी ने, पर फिर भी तो उन्हां दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, रोख रूहान की रोजी ना टार। तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने कि मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है, मैं हुण निश्चा कर लिया है कि दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी, ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा, ते उन ते मंगके ही देना है। मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा, मेरे गुरु ने मैनु सोझी पवा दिती है, गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनु सोझी मिल गई है कि परमेश्वर ही वड्डा दाता है, ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए, इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी, हाजत नहीं रह जांदी। ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है। ते मैं हुण इस निश्चे ते पहुंचा हां, किथों मंगा हो, कौन है इस ते मुकाबले दा दाता? साचा साहिब है ते वड्डा दाता है, उसदे भंडारे अखुट ने। वाह,
मुहे दूजी नाही थौर जिस पे हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए। कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है। सारे बाजार च गया मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा ही हुंदी गई। कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन बड़िया बड़िया दुकाना सन पुश्त दर पुश्त चलन वालिया ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है सिक्का भी नहीं है गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया ता सा फिर होया की है। जदो मैं दुआ कीती जदो इल्तजा कीती जदो खाली ठूठा अगे कीता ते उन्हें अगे कहा मुआफ कर बाबा मुआफ कर बाबा। इसे तरह मैं सारे घर दे अग्यो दी आया बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया बाजार मुक गया घर मुक गया इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे तां इहो हाल हुंदा है पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनूं यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहंदा। हुंदा भी एवें किसे आख्या माफ करो बाबा कम काज करके फिर आए फिर उथे खलोता तेनू क्या सी जा अगे फिर कम लग गए तू फिर इथे खलोता है गया क्यों ने ओ पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मेनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी कोई मदाऊ कीता है किसे ने किसे निमंत्रण दिता है पे इथे अगे आ जा तुसी ता कही जाओ अगे चल माफ कर मैं ता हुण तेरा दर मान लिया है तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उथे ही रहना। जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नू भी ऐसा एक जगह आख्या ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासां करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है ओ करन कारण समर्थ हो कर दई है आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोहतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदो तक कई बारी इनू शक्का शकूकां दा शुभात दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपदे तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नू छड के जाना किते नहीं चाहिदा क्योंकि मैं जिसका तार लिया मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे।

मार्ग तक दिन तुरना है, गरीब ने भी तुरना है, अमीर ने भी तुरना है, कंगाल ने भी तुरना है, राजे महाराजे ने भी तुरना। कौन अपन है महाराज, फिर तंता इतने डरते जी रह गए, कारा भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धिया ने भी साथ नहीं देना, कई वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हजूर हो।

0: देख कर।
1: हाँ। तो भाई के दरगाह की माता जी मच्छर कर दे टिकट नो कितना संभाल के यूके जाना हो हजारा रुपए की टिकट होती है भी समान टिकट जो सिर दे के वाहगुरु जो शब्द गुरमंत्र सानू गुरु तो गुरमंत्र जो नाम है ना तो सानू गुरु और कोई नाम नहीं दे सकता नाम पूरे गुरु तो मिले ते नाम दी जो प्रेरणा है ते नाम जपने वाले महापुरुष नाम गुरु तो नाम अमोलक रतन है पूरे सदगुरु पूरे गुरु तो किस वेले मिले जिस वेले असी अमृत छक पंजा प्यारे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी जिस वेले पंज अपन भुलों को सोच अरदास कर अमृत तैयार करते हैं तो कलगीधर पिता जी का हुक्म है कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी भी जिस वेले पंज प्यारे तैयार कर त्यार अपने सोच के अपने आप को सोच के साहबा की हजूरी खड़ोते होते हैं हजूर कहना उन्होंने पंजा के अंदर मैं आप आ रहा पंज परवान पंज प्रधान पंजे पावन पंजे सो है इतने कोई व्यक्ति नहीं तो व्यक्ति पंजा शाम कलगी पातशाह जी ने इन बंधना कट दिया कोई व्यक्ति पर जो गुरसिख बाणी का नितने भी प्रेम गुरु के हुक्म रहन फिर अमृत पान कराने को पहला फिर भी अरदास कर आशा कर दूंगी जी हर वेले हर श्वास आप बख्शिश करो पिछले अवगुण बख्श ल प्रभ आगे गुरु बख्शते बहुत पंच प्यारे त्यार कर फिर अमृत छकने वाले उस वेले गुरमंत्र भी ना गुरु गुरु तो मिलेगा इस नाम की प्रोता महापुरुष बाबा जी बचन करते सन गुरुआ गुरु गुरु ग्रंथ पर संगत महापुरुष केड़े महापुरुष दी जेड़े सन गुरु ग्रंथ साहब ने जेड़े तोड़ते उन्होंने की संगत महापुरुष बचन करते सन जो गुरु ग्रंथ साहब तो प्या तोड़ता है वह सानू गुरु तो तोड़ी संगत नहीं जेडे जुड़न वाले हैं जिन्हों की संदरिया दुरमत मजे मित्र सारे सही हाँ नी जग सभाया जब नानक बिरले है ही कोई नहीं भाई है बिरले ना ही घने फैल पकड़ नाग फोटो वेखो ना भी किसी चीज का नाम दी जिस तरह मास्टर इनम नहीं ना बन सकता मास्टर हो इन हो इसे तरह संत सारे चंगे हैं पर जो धन गुरु नानक पातशाह जी का संत है गुरु सिख है महापुरुष है वो आप गुरु नहीं बनेगा संत बड़ा जोड़ देगा उन्होंने महापुरुषों की संगत नाल संत
2: You are listening to SeekNet Media, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

सरोही नमो श्री प्रभति बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती बडैली सरोही, नमो श्री भगौती।

सुभता हाथ सोही, सुभता हाथ सोही, नमो लोहे की पत्रिका झलहे लहंती, नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती, नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती, नमो पान की बान गंगा तरंगी, नमो पान की बान गंगा तरंगी, तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी, फिरे शाम है मोख दाती।

शास्त्र नाम नमस्कार जिते शास्त्र नाम नमस्कार तम संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे है कहंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरं तुम धड़क आगर्दन तीरं तुम धड़क आगर्दन तीरं तुम धड़क आगर्दन तीरं

भाई नंदलाल जी। ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त, हमेशा जिंदा अस्त। ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है, इसनु ध्रुपद ताल भी कहते ने, चार ताल भी कहते, ध्रुपद ताल भी कहते। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर ए जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच, इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने, और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे,
1: सेव करो करना निज की, जैसे चार पुगारे नाम लिए जम त्रास मिटे, कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अमर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है, यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी, चढ़दे तो लेंदे तक खालसे की फतेह होएगी, और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे,
1: लंक लूट लिया, लंक

मटैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाच तीन लोक गाइया कहूं के तनैया है न मैया जाके पैया हूँ छोड़ू हूँ के चुना कोड़ जादू प्रीत लाइया साधना सदैया धूल तानी के पदैया तो

0: सब तन का गुर सतगुर गुर सतगुर जित मिल हर पड़ता तू तन तन समर्पण कर
1: मैं तुझ बिन अगर ना कोई तुझ आपे

त्रिवेणी नदी के किनारे थे। दुनिया नु तारन वाला मेरा धन गुरु नानक समाधि लगा के बैठे।

इस अमृत को प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम बरसे अमृत धारा मन पीड़े सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द न सुने कन्ना कटोरे बना के निरल अमृत बाणी का रस पीता है तो खुशकिस्मत गुरु नानक के दर से सदा ही अमृत रसता है पर पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पैर महल में चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा जी बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते हैं दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनु पकाइए फिर वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा सरसों किस तरह उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट की लोड़ वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल प्यार दे नाल दीवा दे जो भी जग गया दीवा फिर लोग आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदा पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक के दरबार चाहे जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रसना पवित्र करो सेवक के कन सफले करो प्यार आखो सतनाम धन्यवाद जो गुरु ने प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबको कुछ दिता है साढ़े वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार ली बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखनी दाल तुम बाहर चले जाते हो फिर उदास होके मेरे को आ जाते ने कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी हो रही साडा भी कोई बापू दूजिया ने बापू अपने बच्चों मठियाइयां लिया के देने खिलौने लिया के देते तरह तरह की चीजा लिया के देंगे बेबे साडा भी कोई बापू वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हूं पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है पर वीर हुण ना जा हुण ना परदेसा नू जा तो प्यारी सात संगत परवकारी दाता जी दोवां बच्चियां नू श्री चंद ते लक्ष्मी दास गोडिया ते बैठे सानू ठा दिता पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारे पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती चढ़ जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नू उठा के ते बेबे वाल मुखातब होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पालसी सारिया नू जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहा बेबे मेरे निरंकार रब बनाया संसार दुनिया दुखी है काम क्रोध मोहंकार दी अगली साधी बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दारू नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुर मना रहे हो यही दात बनती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेठ बोले तो पीछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा बाबा जी बचर करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है वह इतों कुछ नहीं ले जाता जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं पढ़ता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگا کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے درتے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر نازل دے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپرب منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگتی پہلے سیو بولنے پیچھے ساری سنگت واہ گرو نانک

जन सकल बिकल ब्रह्म काटे मोर, जन सकल बिकल ब्रह्म काटे मोर। चेतना चलो मन भयो पंग, मेरा चेतना चले मन भयो पंग, मेरा मेरा चेतना चले मन भयो पंग।

मन ही माए सो ब्रह्म बताए गुर मन ही माए मेरे चित न चले मन पयो पंग मेरे चित न चले मेरे चित न चले।